0: 走西藏的话，在我走过的路里面，我觉得这条路是最危险的。我把人家车撞了，您赔多少钱？
1: 多给。这车不是我的车子，是人家我借的。
0: 天路七色拐基本上都是180度大转弯，我就特别害怕，就怕车子翻了。
2: वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा disaster हुआ है, road पूरा break हुआ है, तो ये priority पे emulsion और bitumen. लेह का जो road है, बहुत ही ultimate है. मनाली लेह highway, ये world में top 10 dangerous road है, उसमें से एक है ये.
0: 所以没货的司机发生交通事故死亡的货车司机肯定有。我对死亡的话没有恐惧。

0: रोड आप देख सकते हैं कि कितना डेंजरस रोड है, तो एक भी मोड़ थोड़ा सा गलत काटा तो गाड़ी नीचे चला जाता है दरिया में, पानी में।
1: रश्मि जी काम कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं।
0: आई एम वरी अबाउट हिम, मेरा कंपेनियन है,

छोड़ दे, मैं खुद करूंगा चेक। गाड़ी को पूरा चेक किया प्रॉपर। अब हम शुरू कर रहे हैं ले की तरफ। अभी हम दो ट्रक को लेके जा रहे हैं ले को, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है आपस में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा।

मनाली ले हाईवे, ये वर्ल्ड में टॉप 10 डेंजरस रोड है उसमें से एक है ये, और बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं इस रोड पे।

0: अभी हम लोग अटल टनल के अंदर हैं।
1: अटल टनल की स्पेशलिटी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट अल्टीट्यूड और लॉन्गेस्ट टनल है। ये 9 किलोमीटर की टनल है और 3048 मीटर एल्टीट्यूड इसका सी लेवल से है।
0: इससे पहले अभी 3 साल होने को आए अटल टनल बनी, उससे पहले हमें रोहतांग से होकर आना पड़ता था और रोहतांग से आने में 6 घंटे एक्स्ट्रा लगता था। इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई उस कंडीशंस में रोहतांग टॉप को क्रॉस करना, वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता था, आर्मी के ट्रक्स रुक जाते थे, प्राइवेट गाड़ियाँ हमारी रुक जाती थी और वहाँ पे बहुत से इंसिडेंट होते थे।

0: अभी इससे पहले जब रोड ठीक था तो हम ये वाला जो रूट है इसको बहुत जल्दी कवर करते थे। अभी क्या है कि दिन के टाइम जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड्स जो है बहुत जगह से टूट गया हुआ है।
1: आप नीचे देख सकते हैं कितना पत्थर है, ऊपर नीचे स्टोन्स एवरीवेयर। आगे भी है एक छोटा सा डिस्ट्रक्शन पॉइंट, आगे भी है पर इतना बड़ा तो नहीं है, पर है वहाँ पे भी है। बहुत ज़बरदस्त है भाई, रोड की हालत बहुत ख़राब है। ओह माय गॉड।

ये जो डिजास्टर आया इसके बाद की जगह जगह से रोड टूट गया हुआ है, पुराने वाला रोड तो चला गया हुआ है, नया रोड जो काटा हुआ है रोड तो बना दिया है उसको काट के, मगर उसमें लैंडस्लाइड्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इतना मुश्किल से गाड़ी निकल रहा है कि कोई, बहुत ही मुश्किल है। सामान इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें आना पड़ रहा है, बिटुमिन लोड है क्योंकि रोड बनाने के लिए बिटुमिन चाहिए वहाँ पर।

बचपन से ही हमारे ही मेरे ब्लड में ही है ये ट्रकिंग लाइन, तीसरी जनरेशन है मेरी। पहले मेरे दादाजी ने ये काम किया, उसके बाद मेरे पिताजी ने किया। तो मैं रोड की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती थी जब मैं छोटा था, तो मैं एक दो बार अपने ड्राइवर्स के साथ गया सामान पहुंचाने के लिए, ऐसे ही बीच में घूमने के पर्पज़ से भी। तब बिना पैसे खर्च किए हुए नई नई जगह देखने को है,

0: हम परलाचा टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं कि मनाली हाईवे में ये वाला जो टॉप है बहुत डेंजरस टॉप्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज होती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी थी, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी ये बारिश जो है इससे रोड और भी ज़्यादा डेंजरस होने की पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं है, लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाएगा।
1: क्या है, ट्रकिंग लाइन में बहुत से आदमियों की यहाँ पे डेथ हो गई है।
0: अभी हम लोग क्या है हाई अल्टीट्यूड की तरफ बहुत ज़्यादा चढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी को भी टेम्परेचर वगैरह चेक करना पड़ता है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे ओवर हीट होने के चांसेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम है। चढ़ाई भी ज़्यादा है, गाड़ी का इतना पावर भी ज़्यादा लग रहा है, हैवी लोड है तो गाड़ी की पावर उतनी ज़्यादा, गाड़ी को पुश करने के लिए उतना ज़्यादा जोर मांग रहा है, और जिसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, गाड़ी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, इससे गाड़ी को भी बहुत मुश्किल आता है चढ़ाई में जाने के लिए।

0: एवरी ईयर ये रेशो है लगभग 20-25 पीपल्स जो हाई अल्टीट्यूड या इस वजह से जो डेथ होती है इस रोड पे, उस कंडीशंस में भी सांस फूलना शुरू होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई और ये हो गया।
1: ये देखो सामने यहाँ पे लिखा है 4850 मीटर इसका अल्टीट्यूड है सी लेवल से।

जब भी हम इस रोड से जाते हैं तो प्रे करते हैं, सभी के लिए प्रे की, सभी ट्रकर के लिए कर। ये जो मौसम की कंडीशन है, ये बहुत साल बाद इस बार हमें काम करना बहुत मुश्किल हो गया। ये लग रहा है कि ये सीज़न बहुत छोटा रहेगा, अभी विंटर स्टार्ट हो जाएगी, यानी अगर सितंबर के बाद इस रोड पे चलना बहुत टफ हो जाएगा। तो इन सब के लिए सीज़न अच्छा सा गुजरे, सभी के लिए मैंने प्रे की, सभी ट्रकिंग लाइन का, सभी लोग अच्छे से गुजरें कि सभी कुछ अच्छे से हो जाए।

0: हम लोग जो है अभी 22 लूप्स को 22 कैंची बोलते हैं, 22 मोड़। एक तो ये लोड बहुत है, मतलब चढ़ाई है पूरा।
1: 22 मोड़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी वो कैसे बिल्कुल डाउन से नदी साइड से शुरू होता है और कहाँ टॉप पे। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ऑक्सीजन की नीड जो है सिर्फ ड्राइवर्स को ही अकेले नहीं है, जो गाड़ी है हमारी उसको भी ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि कुछ भी जलाने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए तो ऑक्सीजन तो चाहिए। गाड़ी में लोड है, ऊपर से इतनी चढ़ाई है, तो गाड़ी में भी प्रॉब्लम होती है। और एक प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इस ओवरहीटिंग। अभी जो दूसरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर है वो माही है, वो मेरे पास लगभग 3 सालों से गाड़ी चला रहा है।
2: ये रोड के बारे में सबसे खतरनाक भाई जी, एक तो इसमें चढ़ाई बहुत है और ऑक्सीजन की वजह से गाड़ी एक्सीलेटर रनिंग नहीं पकड़ती है, कई गाड़ियां जो है कि खड़ी हो जाती है चढ़ाइयों पे।
3: ये यहीं से 15-20 किलोमीटर आगे मेरे एक दोस्त था, तो वो ट्रक वो खाना बना रहे थे गाड़ी में बैठ के, पीछे से गाड़ी वाला आया, थोड़ा नींद में था और उसकी गाड़ी उसके पीछे डाले में जाके बजी और उनकी डेथ हो गई थी। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई बार मौत के मुंह से निकले हैं। ये तो लाइन ही ऐसी है, मशीनरी है।
0: हम लोगों ने बिटुमिन कैरी किया हुआ है, पीछे जो गाड़ी उसमें इमल्शन कैरी किया हुआ है, और दोनों का जो है ना लिक्विड टाइप में है तो गाड़ी बहुत टिल्ट करता है 22 लूप्स में। ड्रम कभी भी नीचे गिर गया, एक दूसरे के ऊपर उलट पलट गया तो गाड़ी को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। जिस साइड को वेट होगा हैवी लोड का, गाड़ी उसी साइड को जाएगी। आई एम वरी अबाउट हिम, मेरा कंपेनियन है।
4: हमारा गाड़ी भी प्रॉब्लम दे रहा है,

0: क्लच का प्रॉब्लम है, क्लच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और गाड़ी मतलब कि स्टार्ट भी नहीं हो रहा है इसकी वजह से। अगर गियर लगा के स्टार्ट ना करे तो गियर ना लगे।
1: तो गाड़ी बंद करके गियर लगाना पड़ता है और बंद करके वैसे ही गियर में सलफ मारना पड़ता है तो गाड़ी वैसे ही चल पड़ती है, क्लच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इधर ना मैकेनिक है, फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है, मैकेनिक तो इधर आते नहीं है गाड़ी का काम करने, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है।
2: क्लच नहीं जी काम कर रहा, ट्राई कर रहे हैं देख रहे हैं।
1: गियर लग नहीं रहे, एक बाजू में भी दर्द हो चुका है, अभी शरीर में ऐसा ये क्लच वाला पाँव है इसमें भी दर्द हो चुका है।

और जहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ती है तो वहाँ पे उसको एक स्टोन लगा के धीरे धीरे मूव करना पड़ता है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। एक तो वो गाड़ी जब हाइट पे चढ़ रही होती है, नहीं चढ़ पाती है, अकेला ड्राइवर है, अगर वो ब्रेक मारता है, ब्रेक पे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं, पीछे को डाउन होती है, बैक में ब्रेक कम लगती है, जब गाड़ी रोड से बाहर निकलेगी खाली गाड़ी और इतनी हाइट से रोल करते हुए जाएगी, तो हमने बहुत सी मौतें इस रोड पर देखी हुई है।

जैसे भी हमने इस गाड़ी को मैनेज करके, क्योंकि ना मैकेनिक है ना कुछ है, हम लोग दोनों लगे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये तभी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों का आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है।

क्योंकि मेरा तो जन्म ही यहीं पे हुआ है, हिमालयस में ही, इसी रेंज में पला बड़ा। हिमालयस को पूजा करते हैं कि हमें यहाँ से, हम आपको क्रॉस कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जो हमारी जर्नी है उसको ईजी बनाओ आप।

0: अब यहाँ से ले लगभग 40 किलोमीटर रह गया है। मैं और माही ने हमने मनाली से जर्नी स्टार्ट की थी और नॉन स्टॉप 450 किलोमीटर मनाली से ले है, दो दिन में इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया।
1: बहुत अच्छा जी, हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रास्ते में रुक जाती गाड़ी, शायद अगर हम थोड़ा सा भी मतलब कि हौसला ना करते कि गाड़ी पहुँचाने का।
2: अभी माही को वो अपने गंतव्य स्थान पे, जहाँ पे उसने पहुँचना है, जहाँ पे उसकी गाड़ी अनलोड होनी है,

0: और सुबह जो है ना अनलोडिंग यहाँ पे आगे जो पेट्रोल पंप है करना।
1: चलो यहाँ पहुँच गए।
0: हाँ यही है, बड़ी बात है। चल ठीक है फिर, रखियो ध्यान में, ले मैं खाली करूँगा, तू यहाँ खाली कर। ठीक है फिर, बाय।

अभी अंधेरा होने को आ रहा है। पूरी वैली जो है उसको लद्दाख बोलते हैं। कैपिटल जो इसका है वो लेह है। लेह है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सारी मुश्किलों से पार पाते हुए फाइनली लेह में तो पहुंच गए। अभी ये जो गाड़ी है कहीं दूसरी जगह जाएगी अनलोड करने के लिए। वहाँ पे रोड अभी ठीक नहीं है। अभी 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। अनलोडिंग का अभी पूरा अच्छे से मालूम नहीं है। अभी सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि अभी फ़िलहाल अपना आराम से सोने का है। उसके बाद ही बाद में देखते हैं कि क्या करना है।

0: लद्दाखी फ्रेंड्स हैं, जब भी गाड़ी लेके हम ले आते हैं तो थोड़ा सा अनलोडिंग के लिए समय मिल जाता है, तो उस समय में मैं उनसे मिलता हूँ।
1: हाँ हाँ भाई,
0: 3 साल हो गए यार।
1: और क्या वाला है, कैसे आया हूँ इतना लंबे दिन के बाद?
0: बहुत मुश्किल से आया यार।
1: हाँ,
0: इतनी प्रॉब्लम हो गई नीचे, तेरे को पता ही है सब कुछ।
1: हाँ, वो सब तो सुना था।
0: बाढ़ आ गई। यसो को मैं ईयर 2000 से जानता हूँ। उस दौरान जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो उनके साथ वो पढ़ा, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे उनके सर्कल में था, उस तरह से वो हम लोग आपस में मिले।
1: वहाँ बारिश ज्यादा हो गया इस साल, यहाँ यहाँ इतना नहीं हुआ।
0: यहाँ पे कैसा है इस बार?
1: हाँ, इतना नहीं है, थोड़ा ठीक ही रहा था।
0: ऐसा क्यों हो रहा है ये?
1: तो यहाँ पर ये है ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। अभी थोड़ा चेंज होने के बाद बर्फ कम गिर रहा है, अभी बारिश ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इशू ज्यादा है। क्योंकि बर्फ नहीं गिर रहा है तो ग्लेशियर नहीं बन रहा है। जो गांव में ग्लेशियर कम है उसमें पानी बहुत दिक्कत है। यहाँ कुछ कुछ गाँव में है कि कहीं पानी, पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं होता है स्टार्टिंग 2 मंथ्स के लिए।
0: ले में लोगों को प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है पानी का। ले जो बना हुआ है, ले जो सिटी बनी हुई है, वो पुराने टाइम से उसी हिसाब से जितने कर लोग थे उसी हिसाब से बनी है। अभी क्या है, टूरिज्म की वजह से यहाँ पे क्राउड बढ़ रहा है और दिन ब दिन जो होता है पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है।
1: अच्छा यार, अभी क्या लेके आया तुमने लोग?
0: अभी बिटुमिन लोड है, अभी उनका थोड़ा सा वहाँ पे उनके भी हाथ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद 1-2 दिन में अनलोड हो जाएगी गाड़ी।

0: slowing Chinese economy is redefining the country's trade relations with the world. On your next Asia Fast, we take you to South Africa, where Beijing is betting on zero tariffs and increased investment to spur a wave of overseas expansion.
1: Japan is famous for its food, but after two decades of trying to raise its food self-sufficiency, nearly two-thirds of what Japanese people consume still come from overseas. How did one of the world's great food cultures lose the ability to feed itself? Insight Thursday on CNA.
2: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust. Saturday on Japan Hour, cycle around Kagoshima and discover the people who are keeping traditions alive. Japan Hour, Saturday on CNA.
3: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI.
4: My mom has dementia.
5: If I turn around and my mom wasn't there, I would probably panic.
4: Every month in Singapore, two people with dementia go missing. So I'm heading to Japan.
6: GPS の貸し出しをしてたりとか、と今は見守りのシールっていうのがあって。
4: How can we keep our loved ones safe without locking them away? A two-part special. Talking Point, Sunday on CNA.
7: Vijay isn't cleaning his phone. He's trying to cool it down. Because without his phone, he can't work. And in Delhi's summer heat, the hotter it gets, the less he earns.
8: ये अपने आप स्क्रॉल होगा, अपने आप ऐप खुलते रहेंगे, अपने आप कॉल मिल जाएगा, कुछ भी हो जाता है। सबसे और ये करीबन जो जब तक ये कूलिंग नहीं आता, फोन कूल नहीं होता, बिल्कुल ठंडा नहीं होता, तब तक आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, वो अपना काम नहीं करेगा। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कुछ काम ही नहीं कर सकते।
7: Temperatures in Delhi regularly hit above 40 degrees Celsius in the summer. But the overheating phone is only the first way the heat cuts into Vijay's earnings. When temperatures climb, business slows too.
8: एक तो दोपहर में राइडर को राइड नहीं मिलती हैं, कम राइड मिलती हैं, और राइड मिलती हैं तो उसमें क्या है जो बैठ के जा रहा है गर्मी उसके लिए भी है, तो कंपनियां क्या करती है प्राइस घटा देती है। माने एक कस्टमर अगर 10 किलोमीटर जा रहा है जहां 90 रुपए का चार्ज है तो वो ये 70 रुपए में ले आते हैं गर्मी है इसलिए।
7: When temperatures climb, he gets fewer passengers. And even when they book, Vijay says fares fall. The hotter the day, the less each trip pays. So during the hottest months, his income has plunged by almost 80%. And staying on the road comes at a cost.
8: देखिए राइड चलाते समय जो टेम्परेचर ऐसा होता है आप अब मैं एक अंदाजा क्या बताऊं जलती हुई भट्टी जैसे कहते हैं लावा लावा देखा होगा आपने जो हम बाइक चलाते हैं ना जिस हिसाब से गर्मी और लू चल रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं हम लावे के अंदर घुस रहे हैं अब मेरी फीलिंग को आप समझ लीजिए और सबसे बड़ी बात है कि लंबा रूट मिल जाता है जगह जगह हमारे बीच रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता और जो हम पानी साथ में लेके जाते हैं वो भी इतना उबल जाता है आप उससे हाथ नहीं धो सकते पियेंगे क्या
7: Even when his shift ends, there's little respite.
8: आप देखिए हम 3 से 4 घंटे गर्मी में गाड़ी चलाते हैं एक नॉर्मल आदमी जो आम आदमी होता है वो 4 घंटे 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब घर आता है, अब नॉर्मल घरों में क्या होते हैं, पंखे। अब इतने टेम्परेचर जब छत खोल रही होती है ना तो पंखे कूलिंग नहीं देते, वो भी आग फेंकते हैं, ठीक है। अब वो 4-5 घंटे जॉब करने के बाद आता है और यहाँ रेस्ट करता है तो वो चैन की नींद नहीं ले पाता।
7: So Vijay hasn't just changed how he works, he's changed when he works. He now avoids the hottest part of the day, but working fewer hours also means earning less. So this year, he made a bigger change. From 7 a.m. to 3 p.m., Vijay works as a security guard. When the temperature drops, he switches to ride hailing. The security job doesn't pay more. In fact, it's still outdoors, but unlike ride hailing, it guarantees an income every month. That's become more valuable than flexibility.
8: Ola Uber chalane ke alawa ye jo private job maine join ki hai, iska main maqsad jo tha, mera motive tha ki hum jab 12 ghante ride chalate hain to compulsory nahi ki hum 12 se 1500 ki income kar le. माने 70% माने 30% चांस है कि हम 1200-1500 का काम कर लेंगे, लेकिन 70% चांस है कि वो 600 तक ही जाए. तो मेरा मकसद था, मैं ये सोचा करना चाहता था कि मैं एक फिक्स अमाउंट कहीं एक सेट करूं, जिससे मेरी फैमिली में मुझे कोई दिक्कत ना आए, कि मुझे ये पता रहे कि एक फ़िक्स अमाउंट यहाँ से मेरा आएगा और जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ वो मेरे एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगी. इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन की.
7: Between Vijay's two jobs and his wife's income, the family brings home around 40,000 rupees each month, around $420. But after food, fuel, housing and bike loans, school fees and medication for his elderly mother, there's often nothing left.
8: दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं ना, जो पीछे बैकग्राउंड फैमिली बैठी हुई है उसके बारे में सोच के तो फिर गर्मी सर्दी अब कुछ नजर नहीं आता.
7: Researchers tracking more than 1,000 gig workers in India say absenteeism rates go up on hotter days, and it squeezes workers from both sides. They earn less because they work fewer hours, but they also spend more.
9: So they have to spend a lot more on, for instance, on buying cooling drinks. And another thing they spend on is they face a lot of vehicle breakdown. Mobile phone is not working properly because of high exposure to heat. So heat is directly related with the income volatility of the workers, is what we find.
7: Vijay has adapted to this reality this year, but he's not sure it will always be enough.
8: अगर ये गर्मी जिस हिसाब से अभी पड़ रही है और बढ़ती रही ना हर साल, तो फिर मुझे ये ओला और रैपिडो तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, छोड़ने के बाद ये नहीं है कि हम सिंगल ड्यूटी करें, मैं एक सेकंड जॉब की तलाश में रहूँगा.
7: Climate change is often discussed in terms of rising temperatures. But for the millions of gig workers in India and across Asia, the heat shapes how they work and therefore how much they can earn.